0: उनी कार्यालयलाई खबर दिए।
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।